गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदरा सुन बैठे देवतया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सोर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खा

रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

रहाओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वडे आई। सब सातो सब तापो सब चंगे आई।

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी।

जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर ध्यावह हर ध्यावह तुद जी, से जान जुग मैं सुख वासी। से मुकत पाए जिन हर ध्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करै हर।

खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतह जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी।

सोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब ने त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहौ, आप हाथ दय मोहे बचावहौ। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

चाहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, काट काट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निराला।

जाकुपी वन पावत बेता ताकौ कार पाहन अनुमानत महामूढ़ काशपेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा।

जसे तज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न आय है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मोहरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई।

तिहारो कहा। दारिद्र दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तो मैं स्वर्ण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रह

तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पहु जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोए न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाइय ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वाथ दे जग मह उत्तम काडिया विरले के। महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारेन गुर की पैरी पाए

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दकार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दे दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खाल

बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन पर

0: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह। आओ गुरु की प्यारी साध संगत जी, हुण टाइम होया है कीर्तन दा। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले अपने जत्थे समेत 8:30 बजे तक कीर्तन की हाजिरी भरी गई। उपरंत अरदास बेनती सुखासन की सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवा सके पातशाह जी, ओ आप जी ने मेहर आमद की है। दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शे ने। आप जी का कोटान कोट शुक्र है, धन्यवाद है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह इस वेले आप जी दे पावन दरबार विखे दीवान की समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन की सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ किए ने। आप जी दे दर करदे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां बख्श देनियां जी। अगों वास्ते समर्थ बख्शिश करनी। आप जी कृपा करके अपने सुख आसन अस्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत होवे। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शणे जी। सही प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम जिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुपाओ कल करीस तन माहि मिटाओ सिमरो जास विश्वभरी कै नाम जपत अगनत अनेक वेद पुराण सिमृत सुधाखियर कीने राम नामिका खर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न वावे कांखी एक दरस्तुहारो नानक उन संग मोहि उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम न सह प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कच विघ्न न लागे प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हरि रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बोध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरहे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उधरे ऊंचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझ है प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझ है प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ कौ सिमरह से तनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतिवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमोताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ कौ सिमरह से परोपकारी प्रभ कौ सिमरह तिन सद बलहारी प्रभ कौ सिमरह से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमरह तिन शोक विहावे प्रभ कौ सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ कौ सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ कौ सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ कौ सिमरह बसे हरनेरे शांत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कभू ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुणबानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन ने चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत ना पार सिमरह से जान जन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद पाए हर सिमरन पहे सिर जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में है आप निरंकारा कर कृपा जिसु आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना काटे काटे नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जमदल तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तर है अनिक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जेह मार्ग जात अकेला ते हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा तिहाई है
नानक गुरमुख परमगत पाई, छूटत नहीं कोट लकबाही, नाम जपत तह पार पराही, अनिक बिघन जह आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मेला मल कभुना तो वे, हर का नाम ओट पाप खोवे, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जी मार्ग की गनी जाहे ना कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जे पेंडे महा अंध गुब्बारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल अच्छानू, जय मां प्यान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम परछाम, जहां त्रिखा मन पूजा करखे, तह नानक हर हर अमृत बरखे, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रति रंगी कै, नानक जन कै बिरत विवेक, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर के नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कचना है वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन गवर ना जानी, ओत पोत जन हर रसराते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग उड भागी पाई है, संत की सेवा नाम तिहाई है, नाम तुल कछवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पीखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टदीप, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए भोजतना, पुन दान होमे भोरतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे भोपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौखंड प्रतिमी फिरे चिरजीव, मां उदास तपी सरथी वै, अगन माहे हो मत प्राण, कनिक असव है वरपूम दान, न्योली कर्म करे बहुआसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो पी हो मैं मेल ना जावे, हर के नाम समसर कचना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छोटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन स्वर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस दे ही कौ बहु साधना करे, मन ते कबूना विखिया टरे, जल तो वे बहु देह अनीत, सुध कहा हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत स्याण जमका पो व्यापे, अनेक जतन करत सुनना त्रापे, पीख अनेक अगनी बुझे, कोट पाव दृघ नहीं सीजे, छूट सुना ही उपयाल, मोहि व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जमडा ने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए, चार पदार्थ जे को मांग है, साथ जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग यह हो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे,
जिस जन कौ प्रभु दर्श पियासा, नानक ताके बाले बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संजा का मिटे अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा, जा का मन हुए सगल की जीना, हर हर नाम तिन काट काट जीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ट साजना, सुख दुख जन समृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा, निर्तन कौ तन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा थाव, निमाने कौ प्रभु तेरो मान, सगल कटा कौ देहो दान।

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸੋ ਵਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਤ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਜਾਪੇ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹੇ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦ੍ਰਭ ਕਉ ਹਿਰਹੇ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵੇ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਵਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲੇ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਗੰਧ, ਮੁਖਾਵਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ, ਨੇਕ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਨ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਔਰ ਕਚੌਰ ਕੁਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਪਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪ ਮਾਨੈ। ਆਪ ਹੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਪਾਉ ਸਿਆਮ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੰਗੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਸਹੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਇ ਸਦਾ ਮਨਵੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹਿ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤਉ ਲੁਭਾਵਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੂਈ ਜੈ, ਮਨੁ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵਹੋ ਇਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛੇਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਭੋਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬੂਨਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਨਾ, ਰਾਗ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏ ਕਲਖ ਹੈ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁਨ ਬਹੁ ਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਥ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਹੇ ਬਿਸਮਾਤ।
जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जीवसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गति पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समावे, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागहु, गुरु प्रसाद नानक मन जागहु, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल नामन हो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, जे मन मूड तूता को जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच, जे मन मेरे तू ता स्यो राज, जे प्रसाद सबकी गत हुए, नानक जाप जपे जप सोए, आप जपाए जपे सोना, आप गवाए आप गावाए सोहर गुनगाओ, प्रभु कृपाते हुए प्रगास, प्रभु दयाते कमल विगास, प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दयाते मत उत्तम होए, सर्व निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु ना किन्हु लयाओ, जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ श्लोक, अगम गाद पार न सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नीरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु महेशमानी, साध के संग गोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्लाए, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पहुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग नकत मुक्तावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, साध के संग ना बिगा पैर, साध के संग ना ही कुमंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही होताप, साध के संग तजय सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनवाई, साध के संग ना कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग वस्तु अगोचर है, साधु के संग अजर है, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे, साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सबको वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग ईहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न वृथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उधरे साध सुन रस है, साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मनते विसरे, साध संग सर पर निस्तर है, साध के संग लग गए प्रभ मीठा, साधु के संग काटे काटे डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गाते पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्यान है, साध की उपमा थे गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत,
साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पीख कसबिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राजरंग कौला दुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जी एक ज्यो वसुधा को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जान पय नानक जिन प्रभु आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नान ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का उसदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक और तार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक हो अपर्श सगल निस्तार है अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, प्रत्यय रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संगहित, कारण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मुंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टर है, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कोट में देव को ऐसा परस, वैष्णव सोजी सुपुर सो प्रसन्न, विषन की माया ते हुए भिन्न, कर्म कर तो हुए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाच है, केवल भगत कीर्तन संग्राच है, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल, आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे, नानक को वैष्णव परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सकल त्याग है दुष्ट का संग, मन ते विनसै सगला परम, कर पूजे सकल पार ब्रह्म, साथ संग पापा मल खोवे, इस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तनर पै विसन प्रीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है,
राम नाम हुआ तम महसोध है, राम नाम साजस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूक्ष्म मह जाने स्थूल, चवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित का उसदादेश, बीज मंत्र श्रव को ज्ञान, बीज मंत्र श्रव को ज्ञान, चहुरना मह जपै कु नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कार्य कृपा अंतर उर तारे, पस प्रेत मुक्त पात्र का उतारे, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत की तैना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगात मुदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तमितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर तैसा उसो, सदा अनंत तैने वियोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो उड़ताई साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त, पार उनके से लिठाओ, जित जित कर राख है तैसा तिन्नाओ, आप एक निकरा उनजोग, प्रभ पावे सोई फुन हो, पसरियो आप फे अनत तरंग, लखिए ना जाहे पार भ्रम के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार भ्रम करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल स्वरूप, उस तत्कृह नेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची, बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी, कई कोट हुए पुजारी, कई कोटाचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट वन परमेह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान ता रहे, कई कोट कब का विचार रहे, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कांत ना पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यगातम निकोर, कई कोट पर द्रव को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है, कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट प्रदेश परमा है, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सकल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सूरन थीवे, कई कोट चख किन्नर पिशाच, कई कोट पूत प्रेत सुकर में गाच, सबते नेरे सब हुते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बो जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किच प्रभ के हाथे, कई कोट पहे वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रत्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार से उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने भोपात, प्रत्ये हुए ब्रह्मा समात,
ताकांत ना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम स्पीव है अमर पह सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुनगाव है आत्म रस सुख से समाव है अपने जन को सास सास समारे नान कोई परमेश्वर की प्यारे। श्लोक करण कान प्रवेक है दूसर ना ही कोई नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण क्रावण करने जो जो तिस पावे सोई हो खिन में था पुता पनहारा अंत ने किस पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कार्य कर देख अपनी बड़ियाई नानक सब मेरे हर समाई प्रभावे मानु गत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे विंसास दे राख है प्रभावे ता हर गुण पाख है प्रभावे ता पति तुधार है आप करे आपन विचार है दुहा श्रेया का एह आप स्वामी दुहा श्रेया का आप स्वामी खेल विकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरना आवे कौ मानुक ते क्या हुए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजानत भिख्या मेहर चै जे जानत अपन आप बचै

नानक ते जन नाम मिले, खिन में नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु नांगावे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाका उपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, काटे काट पून ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल ना ही इस हाथ, कनकरावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुनती हो, कभू ऊंच नीच में बसे, कभू सोग हरक रंग हसे, कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब आकाश प्याल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कभू नृत करे भोपात, कभू सोए रह दिन रात, कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्व की होत रवाल, कभू होए भय बड़ राजा, कभू पेखारी नीच का साजा, कभू अब कीर्त में आवे, कभू पला पला कहावे, ज्यो प्रवरा कहते ही रहे, गुरुप्रसाद नानक सच कहे, कभू होए पंडित करे वख्यान, कभू मौन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कभू कीट हर्थ पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रपावे तिवे नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कभू साध संगत उपावे, उस स्थान ते बहु ना आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रतेक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आय कटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टदी, जिसके अंतर राजमान, सो नरपाती होवत सुहान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस का कर्मवंत कहावे, जन्म मरे वो जोन परमावे, तन पूम का जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नान की हां मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता हो एक कर गर्भावे, दिन समान कट संग ना जावे, बोल कर मान को पर करे आस, फल पीतरता का होए विनाश, सत्य आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसा न बदे आप अहंकारी, त्रम राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जिन नानक दरगे प्रमान, कोट कर्म करे हो तारे, शर्म पावे सगले विरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, अनेक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस काओ जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे, सर्व की रेन जाका मन हुए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछोए, तब इसका सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूट है, गुर प्रसाद नानक हो छूट है, सहज कट्टे लख को उठतावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे, अनिक भोग विख्या के करे, न तृप्तावे कप कप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सबका जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, कर्ण करावन वापी आप, सदा सदा नानक हर जाप, कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आप ही आप हुआ प्रभु सोए, जो किच किनो सो अपने रंग, सबते दूर सबों के संग, बुझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक
सद ही रह समाए आप उपदेश समझे आप रचिया सबके साथ आपकी नो अपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो कि छोए थांत नंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतक करे रंग आपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए साते साते साथ प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद की नवकियानी साचो साचो साचो सब की ना कोट मध्य किनै बिलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी काटे काटे सुनी सर्वन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानक बहोर बहोर अवतार अस्पदी संत कै दुखन वार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के अति कौ रखै ना कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक ही तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सब जोन पाए संत कै दुखन त्रिगित जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाव को नाहे नान संत पारता होए भीगत पाहे संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खिंटिकर ना पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतिहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख मह दोग नानक संत पावे ता उसका भी होए मोक संत का दुखी सदा प्रीत संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लागे संत के दुखी कौ सब त्यागे संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कौ ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लै मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कित काज ना पहुँचै संत के दुखी कौ ध्यान भरमाइय संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक के लोथा संत के दुखी की जड़ किस ना है आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कौ वरना राखन हार नानक संत पावे ता लै उबार संत का दुखी क्यों मिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यो पाव की इंद्र नहीं त्रापै संत का दुखी चुटाई केला ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी तरम तेर है संत का दुखी सदमिथ्या कहत कृत निंदक का तुरही भया नानक ज्योतिष पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दुर्गह में लैस जाए संत का दुखी सदा सहकाइये संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये संत के दुखी की पूजा ना आसा संत का दुखी उपचले निराशा संत के दुख ना तृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए तया कृष्ण मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्या वो सास गिरास सब कचवरत है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनो कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दूप परम पहु जाय अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सुजान देवन को एक कह भगवान जिसके दिया रह घाय बोर्ण तृष्णा ला गये मारे राखे को आप मानुक के किचना ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
नानक विघ्न न लागे कोए। उस तत्मन में कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संगिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रम हर कथा, हर दरगह नानक को जल मथा। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जान होते सुखी, एको एक एक पछाने, हित उत्की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन्हें निरंजन जाने, गुरुप्रसाद अपन आप सुझे, किसकी जानो कृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओहो अर्जुन रहत, आन दिन कीर्तन केवल वख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फांसा, पार भ्रम की जिस मन भूख, नानक किसे न लागे दुख, जिसका हर प्रमन चितावे, सो सब सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीझेया, गुरप्रसाद तत् सब बुझेया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सो ये स्थूल, नह किच जन्मे नह किच मरे, आपन चलित आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनिक जुगत रचथा प्रथाप, अविनाशी नाहि किच खंड, तारण तार रहो ब्रह्मांड, अल कपिए उपर प्रताप, आप जपै ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता जिन प्रभ जाता, सो शोभावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण।

सुई लागे, जिसनों कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नाम जपत पावे हे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किच करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा वसे हर संग, सहज सुभाए हुए सो होए, करने हर पछाने सोए। प्रभु का किया जनमीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस्माए समाए, वे सुख निधान उन्हों बनवाए। आप कहो आप दीनो मान, नान प्रभु जने को जान। आपस कहो आप दीनो मान, नानक प्रभु जने को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जननहार, जा कै सिमरन उधरिय नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गंडनहार गोपाल, सब जिया गया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, इसते वृथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु ना होए, ये सो प्राणी लोचे कोए। किस भी नाही तेरा किच काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत हुए ना ही मोह है, प्रभु की जोत सगल घट सो है। तनवंता हुए क्या को गर्व है, क्या सब किस किसका दिया दर्ब है। आत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वे। जे को हुए बहदाता, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा रोग। जो मंदर को था मैं थमन, त्यों गुरु का सुध मन है थमन। जो पाखाण नाव चढ़ तर है, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है। जीव अंधकार दीप प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। जो महा ज्ञान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की वाचो दूर, नानक की हरलो चापूर। मन मूर्ख काहे बिललाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभु देव नुहार, और त्याग तू तिसे चितार। जो कच करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रसलो भी पतंग। राम नाम जब फिर दे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तूल। लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग भिख्या जंजाल। तहन्य तहन्य कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। एव व्यापार विरला व्यापार है, नानकता कै सद बलहार है। चरण साध के तोहे तोहे पियो, कर्म साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा उठ भागी पाई है, साध संघर कीर्तन गाई है। अनिक विघन ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है। ओट गई संतह दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पुरो लिखे का लेना पाहे। सब किस तिसका हो करने जोग, किस बिन दूसर होवा ना हो। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सत्य ऊंच निर्मल हे करनी। कार कृपा जिसका नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जा के मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते उलोए, जाके हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा वाकार, सच उड़ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किच, त्रिगुणति प्रपिन तिसे बुझाए नानक। जिस होवे सुप्रसन्न अष्टपदी। अवनाशी प्रभु मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिस्ते ना ही किच कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे भी नांगा पेदाना, गैर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन ही उन्नाओ। मनसा पूर्ण सुना जोग, जो कर पाया सोई हो। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कै।
राज मेरा जोग में जोगी, तप में तपिसर गिस्त में भोगी, त्याय त्याय भगत पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाके लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल प्रोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जी

जैसा जना वह तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना विक्रहिक रंग, नाना विध किनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चलित करे खिन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना विध कर बंट बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीव नानक खनाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगला आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सकल स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत्य सत जा की वाणी, सत पुरख समय समाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक पुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत्य जन जाकर हृदय प्रवेश, सत नृत बुझे जे कोय, नाम जपता हकीकत होए, आप सत किया सब सत, आप ये जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवना बूझ करत विचार, करते कीमित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पै बिस्मात, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभ के रंग राच जन रहे, उर के वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख का टनहार, जा के संग तरह संसार, जन का सेवक सो उठभागी, जन के संग एक लिवलागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आदि सच जुगादि सच है पे सच, नानक होसी पे सच अस्पदी, चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत विखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या।

प्रभु अपने सो रहस्यमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ से हजूरे, कौ नानक से जन पूरे, मन मेरे इनकी ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर स्यान सगली छाट, जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे, नानक हरि गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर वचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, कुल का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै, गुरु कै गृह सेवक जो रहै, गुरु की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक

हूँ बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभु निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनिक भगत बंधन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमर।

अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाइक देविनाश जाख मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप मन मेरा कै हर हर एक। अंधकार दीप प्रगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे। तप माहे ठान वरताई आनंद पै दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपहु होए बसे सगल व्याध मन ते खै नसे। इसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी। तित पाई चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभु आप बनाए अपने।

साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभु सीव, आप त्याग शरण गुरुदेव, योर तन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपावना छूटन हारे, सिमृत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना,

फिरत फिरत प्रभु आया प्रिया तो सुनाए, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। इस परी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा।

सो क्यों बिसरे जे व्यक्ति काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गांठ है। गुरपुरै तत यह बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपहु हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अब रह नाम जपावहु। भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सागल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहु गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ। मन तन अंतर यही सुहाओ, नेत्र हो पेक दार सुख होए। मन भिक्षे साध चरण तोए।

कहा किस होत परम, तब मुहु कहा किस होत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरह, तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार, अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन, जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए, जब अवगित गोचर प्रभे का, तब चेत्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे, आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छेद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूप ही ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कौन तृप्तावे, कण करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला पे प्रवीण, तह वेद कतीब का कूचीन, जब आपन आप पूर्त हरे तो सगन

तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानहु आप, जय अचल छेद अभेद समा।

हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, अनदिन पूजे गुर के पैर। ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हार प्रभा पह मिले। सात संग मिल करो नंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर

उबरे राखनहार त्याय निरपहो जपै सगल पहो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस पर राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचनहार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक।

अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सो होत निहाल।

संत जिना के हृदय सब धर्म, संत जिना सुनहे शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण कराउन हार प्रभ जाने, अंतर बसे वार पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगले उत्पत, तिस पावेता करे विस्तार, तिस पावेता एक अंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व पूत आप प्रतारा, सर्व नैना पिखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कह मदलिप तो रहे, जो किच कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तालय समाए, इसते हुए सोना ही बुरा, होरे कहो किने कछ करा, आप ला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, पोत पोता अपन संग्राज, ताकि गतमित कहीं ना जाए, दूसर हुए ता सो जी पाए, इसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नान के हुजान, जो जाने तिस दास खोए, आप मिलाए ले प्रभु सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।

प्रभु की उस्तत करहु संत मीत। सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिसमन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर ना खुए आमन जान, हर तन खाट चल।

एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मेहता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै।

प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पालक होहे ता इक ना चलै नाल

जी लै फिर देहे गावै को जापै विसै दूर गावै को वेखै हाद राह दूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाए खाए हुक्मी हुक्म चलाए रहाओ नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया भाव अपार आखै मंगहै देहे दे दात करे दातार फेर के अगर रखिए जित दिसै दरबार मोहके बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सचनाओ वडिया ये विचार करमी आवे कपड़ा नदरे मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार था पिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्या तिन पाया मान

असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कुड़े फिराहे, असंख मलेच मल पक खाए, असंख निंदक

तू सदा सलामत निरंकार, असंख्य नाव असंख्य थाओ, अगम अगम असंख्य लो। असंख्य कह है सिर पार होए, अखरे नाम अखरे सलाहा, अखरे ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरे लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे ते सिर नाहे, जी फुरमाए।

एक पुराण वक्त ना पायो का दया ये लिखन लेख पुराण थित वर ना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जा करता सिर टेक साजे आपे जाने सोई क्यों कर आखा क्यों सलाही क्यों वरने क्यों जाना नानक आखण सबको आखे एक दो एक से आना वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अग्गे गया न सो है पाता ला पाता लख आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैस अठार है कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होए ता लिखिए लिखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे एति सृतना पाया नदिया अते बहा पवे समुद ना जानिए है समुद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होनी जे तिस मनो न विसरह अंत न सिस्ती कैण न अंत अंत न करने दिन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे अंत न जापे क्या मनमंत अंत न जापे किता आकार अंत न जापे पारावार अंत करण केते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे ए हो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नदरी

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक कोवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाते सब जागे त्रेद सिद्ध।

नानक उत्तम नीच न कोय। राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी त्रमसाल। तिस वि जे जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथ सोहन पंच परवान नदरे करम पवै निशान। कच पकाए उथ पाए नानक गया जा पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते वर में काढ़त कड़िए रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते केते दुपदेश। केते

सेवा केते। नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़ आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप तिथे कड़त कड़िय बहुत अनूप।

अनन सच्चा मन सोए सच खंड वस निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तीर्थ खंड मंडल वर पंड जे को कथे ता अंत न अंत।

कर्म है पर मैं जीते पीते अबा है गा है मान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छल नमो सुमान समस्ते निदान नमो देव देवे पेखे पेवे नमो काल काले नमो सर्प काले नमो सर्वे नमो।

दे अनंगी नामे स्मृति स्वरूप प्रपंगी ब्रह्माते स्मृति विपोते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राज विश्वम परम रूपे नमो जोग जोग विश्वम परम सिद्धे नमो राज राज विश्वम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाण नमो स्त्रमाण नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता आपेखिया परमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोग विश्वम परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो सहासाह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो रोग रोगे नमस्तं।

साथ और गुस्सा सवैये। श्रावक शुद्ध संविधान के देख रहे होकर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सदाधिक संत समूह ने प्रति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को देखित प्राण प्रति के श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रत्ती विन एक रत्ती के माते मतंग जरे जसंगन उपतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप पली विद न्यावत शीसना जात विचारे एते पय तो कहां पे भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही हैं राज हजारे पोत पवित भगवान के पूपत कौन गण नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान पजीविन अंत कंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दयान सुसनम नेम अनेक विषेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जवान समान के पेख है जमीन जवान समान के पेखे पौन आहार जति जतार सदह सो विचार जार्क देखे श्री भगवान पजे बिन पोपत एक तीवन एक न लेखे शुद्ध स्पादरंत दुभा सो सास सुना जान दलेंगे पारी भगवान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन माते मतंग मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान के पावन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अवचार एसार की तार पछैया तोर्त देश मलिंद मुवासन माते जान के मान मलैया गहड़ी ग्राम के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया सैव श्री सबको सिर नायक जाचक ने एक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर पूत पवित पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बो पंच कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जो त्रिलोक जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सोम बरसाज बनेंगे ब्रह्म महेश्वर विसन सच्ची पत अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्री पत के पर्स है पग ते नर फेर न देहे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो काहू ले पहान पूज करियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखियो रवाची दिशा में कहूँ पचाओ कोशिश निवायो कुतान को पूजित है पसको मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया और ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कुतान को पूजित है पसको मृतान को पूजनतायो कूर क्रिया और ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पतपारा हमरे दोस्त सुबह तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी वसे मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर छांज कर दे करे सब बैरन को आज संघरे पूर्ण कोई हमारी आशा और भजन की रह पिया साथ में छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चौन चौन सत्र हमारे मारी है आप वात दे मुझे वरे है मरण काल का त्रासन वरे है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करियो रच्छा राख ले हो मोहे राखन वारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमो पुरी चतुर्दस्तंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कृप संत प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो स्तरण को पल मो बध कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कटकट के पटपट की जानने जब उत्कर करा करता रा प्रजा तारत तब दे अपारा जब आ कर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे तार सब हूँ जेते बदन सिर सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सभी तेरे निरालम जानत भेद भेद आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब ताका निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाथ।

गुरमुख जन्म सकारथा गुर सिख मिल गुर शरणी आया आद पुरख आदेश कर सफल मूर्त गुर दर्शन पाया नमस्कार दंडौत कर मस्तक चरण कमल गुर लाया

पहलो सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महल।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे प्रहजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि छेड़ है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी।

0: कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत बहुत अनंत लाटू मांधाणियां गा पंखी पौंदियां लैना सा सूए चढ़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत नां
1: बंदन बंद पवाए सोए पै करत नचे सब कोए नच नच हसे चलन सिर उड़ना जाए सदना होए नचण कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ पौड़ी न उतरन।

0: जति सदा वै जुगत न जाने छड़ बह करबार सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख पथ परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: वजी सो जिगनान का सच्चा वेके सोए सब निशाला मारियां करता क्रिस होए अगे जात ना जोर है अगे जीवन में जिनकी लेके पत्त वे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जना को दूध पाया।

दुख दारु सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करण में नही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहो। जात में जो जोत में जाता।

जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझह ताहे सतगुर संतोका धर्म गरथवा हो त्रित रथ जत का जोर गरथवा हो द्वापर तप

फिर की सार न जानी दूजे पाए प्यार साकु शुद्ध साकु लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी।

बिन शब्द जग अनेर है, शब्दे प्रगट हुए पंडित मुनि पढ़ पढ़ थके, भेख थके तन धोए।

हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाय। हर तिसह ते आवो संत जनहो, जो अंते लय चढ़ाई। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आई।

दर्शन निमक ताप त्रैमोचन परसत मुकत करत गृह कूप रहाओ। मेरी बांधी भगत छिड़ावै, बांध है भगत

आओ दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई है।

शिख वस्ते गुरु कर आए बाणा भी पा लिया अमृत भी छक लिया पर जे अंदरों कपट ना गया तो कोई फायदा नहीं अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल सतगुरु ऐसी कृपा करो साडे सारिआं दे मन धुप जाण बाणी धोंदी है बाणी पाक पवित्र करदी है बाणी निर्मल करदी है वध तों वध बाणी पढ़नी चाहीदी है गुरसिखां दी गुरमुखां दी संगत करनी चाहीदी है।

महाराज जी की पावन हजूरी विच दुल्हे बच्चे सुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार को हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तेरे सब कुछ मैं सौंपया जा तेरा बंदा